हर हर चरण हृदय उतार हिरदे च वसाने चरण वाहिगुरु सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्ज सफल हमारे। इस तो वड्डा कोई पुन नहीं, इस तो वड्डा कोई दान नहीं है, कोई पूजा नहीं हो रही। पुन दान पूजा परमेश्वर अज कीर्ति गा रहे हो हर कीर्त। यह तत् कढ़ता सतगुरु ने, पंजवें पातशाह ने अज हुक्मनामे दे विच तत् कढ़ दिता। पहला लोकी कोई पुन दान करी जांदे सी, कोई पूजा करदे सीगे, मंदरां दे विच बना लैंदे सी देवतियां दीआं फोटोआं। पर सानू सतगुरु ने किन्ना सौखा दस दिता, कहिंदे पुन दान पूजा परमेश्वर आ जिहड़ी तुसीं कर रहे हो हरी दी कीर्ति। हर कीर्त साध संगत है, सिर करमन के करम सब तो उपर है। यह काम सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। इस तो कोई उपर निर्मल कर्म नहीं है, यह पुन है। कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाए, वाह गुरु। इन्हू पुन किया, इन्हू दान भी किया, दाना सिर दान नाम दान। इस तो वड्डा कोई पुन नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई दान नहीं। तो कहना की है, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। यह कीर्ति करनी है, ये तत् कढ़ दिता पंजवें पातशाह ने अज हुक्मनामा साहब पढ़ के आए तुम। यह तत् है हर कीर्त साध संगत, संगत च बह के कर सिर करमन के करम, सिरे का काम। पर वड्डे भागां वाले मिलता है, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लैना। कई बार आप संगत च आके भी नहीं बोलते, है ना। आप इतों शुरू किया है, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज। ये भी पंजवें पातशाह के बचन, आओ बचन फिर मनीए। हुक्म मनिया होवे, हुक्म है ना गुरबाणी, जे हुक्म मनिया होवे परवान तां खसमे का महल पास। जो गुरबाणी गुरु कह रहे करना पैना। आओ फिर हर कीर्त साध संगत है सिर करमन के करमा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लैण। ताडे भागां च लिखे होया सी

गुरु सारे करियो गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर गम अपार। ये गुण गाउण नाल बड़े सुख मिलते हैं।

हर हर नाम हृदय उरतार हृदय उर मन उदों बनता जदों नाम वस जांदा आ तुसीं कोशिश कर रहे हो अखां बंद कर लेंदे हो मन जो उत्सरू पिया नेत्रां च बैठदा फिर एक हो के सुरती बन के ध्यान बन के चित बन के कन्ना च चले जाना उहदे विच हुण तुसीं इह वसा रहे हो हर हर नाम हर हर चरण हृदय उरतारे ते सिमर नाल हुंदा है सिमर स्वामी वाहिगुरु कहिंदे कारज सफल हमारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कारज सफल हमारे ये करन दे नाल गुण गावत अतुल सुख पाया सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहिबट कहते यहोजा सुख मिलना जेड़ा गिनती मिनती तो ताम अतुल हुंदा जेड़ा तोलिया नहीं जा सकता गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम अपारे गुण किदे गाए ठाकुर दे जेड़ा अगम अपार है ते वाहिगुरु जी ने फिर तुहानू अंगीकार कर लिया जो मन निर्मल हो जाता सुख वेखो की मिलिया ये अपने घर चले गया पर जांदा गुरमंत्र नाल है जे गुरमंत्र नहीं कमाउंदे फिर नहीं जांदा घर सुख वसिया बाहर इन माया दे देश नूं गया किते माया देश आऊगा इत्थे भी सुखी रहेगा ते घर जाएगा अपने निज घर महल पावो सुख सहजे बौड़ ना होएगो ये फेरे बच जाणगे नहीं तो बड़े फेरे होए कई जन्म पै कीट पतंगा कई जन्म गज मीन करंगा कई जन्म पंखी सरपोए ये फेरे मुकने नहीं हैं जे असी सतगुरां दा हुक्म नहीं मानते जे गुण नहीं गाउंदे मन नूं निर्मल नहीं करदे तो ये घर ही नहीं जांदा लिखिया मन निर्मल नहीं दसवें द्वार भ्रम भ्रम आवे मूढ़ा बार बार वो निज घर दे विच जांदा ही नहीं है जिथों इहनूं नाम मिलना तो ये फिर इत्थे रह जांदा अंत समय फिर इहनूं जम कढ़दे ने वो लिखिया गुरबाणी च कहिंदे जिंद नमाणी कढ़ीए हड्डां को कड़काए लिखिया ना सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटां खाएगा धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएंगे आपां बोलदे नहीं ये बोलना पैना सतगुरु कहिंदे राम राम बोल बोल खोजते वडभागी वड्या भागां वाले ने जिहड़े बोल के सुणदे ने अखां बंद करदे मन सुणदा साडा कन्नां च बैठा वो फिर तुप जांदा जे मन सोचा ही सोची जांदा कि मैला हो जांदा ये दो काम करदा सिमरन करदा रहिंदा मन सिमरन कहदा करदा माया दा सोचां दा थॉट्स जिहड़े रात नूं सुपने बन जांदे ये इहदा काम है ये सिमरन छड्डदा नहीं गा मन तो जे इहो ही सिमरदा रहा तो अंत समय की हाल होना इहदा सतगुरु कहिंदे ने अंतकाल जे लक्ष्मी सिमरे कम्मां कारां च ध्यान रह गया ऐसी चिंता में जे मरे मरना तो सारे ही कहिंदे प्रेत जून मिलनी है सर्प जून वाल वाला उतरे सर्प जून अंतकाल जे मंदर सिमरे वड्डे वड्डे घर लै ले सिमरन किया नहीं ध्यान उन्हां च रह गया ये नहीं है वड्डे घर च नहीं रहना कहते जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर तुम जिहड़े मर्जी वड्डे वड्डे फार्म हाउस लो पर उसे संगत होवे ना जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे सो अस्थल सोहण चवारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जी इन्हू भी नगर कहा कहते जपदा नहीं तो उजाड़ च ते उत्थे भूत वसदे फिर भूत वसे तीन माहे भूत की है पांच चोर जेड़े ये फिर घर जन लड़ाई जाते हैं एक दूजे दे पुट दे वाल फिर भूत वाला काम है ना कल युग में धड़े पांच चोर झगड़ाए तो जे आप इन्हों वरज के रखिए
ਤੇ ਵਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਢੋਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਪਣਾ ਵਾ ਹਿਰਦੈ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ, ਦਈਓ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਜੇ ਤੇ ਉਪਜੇ ਉਹ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰੋ। ਆਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਸਾਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੇਗਾ ਇਹ ਧੋਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ।

उपदेश गुरु जिहड़ा वाहिगुरु है ना, ये पांच प्यारे उपदेश कर दे सानू। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, हर हर की वाहिगुरु वाहिगुरु का जप करे, कहते यदा इनान हो जाएगा मन, सब किल विख पाप दोख लै जाए। इना करके फिर तुम नितनेम करना, पहला मन का इनान करा सिमरन के नाल, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर। आप गुरबाणी अनुसार चलना हों, जो गुरबाणी गुरु जी कह रहे हैं है ना। गुरु रामदास जी नूं तुसीं सारे रब मानते हो, आपां पढ़ते हैं ना, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजण हारे धारे, सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कार। ते पार ब्रह्म की गल मानते नहीं, अटल अथा अतोल तू, ये सारे वाहगुरु के गुण है। तेरा अंत ना पारा वारिया, जिनी तू सेव्या भाव कर, जिन्हों ने गुरबाणी कमा लिया सेहत तो पार उतार, लभ लोभ काम क्रोध मोह इतों खेड़ा छड़ा दू, गुरु रामदास जी छड़ा देंगे, मार कढे तो दसा परिवार। धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैसकारिया, नानक तू लहना तू है गुर अमर तू बिचारे, गुर रिठा ता मन सादा, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने। तो गुरु रामदास जी कह रहे हैं, जिहड़ा आपां वचन पढ़ रहे हैं, गुर सतगुर का जो सिख अठाए सो भलके उठ हर। ध्याना हुंदा बड़े ध्यान नाल अखां बंद करके बोल के सुनना। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख लै जावे, ऐ पूरा क्लीन अप हो गया। फिर कहिंदे नितनेम करो, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, ते सारा दिन की करे, काम भी करना तुसीं, वाहिगुरु बोली जावे, फिर बहिंदे आ उठदे आ हरनाम ते आ, जो स्वास ग्रास ते आए मेरा हर हर वाहिगुरु वाहिगुरु, सो गुरसिख गुरु मन पा। कहिंदे उहनूं बड़े चंगे लग जाओगे तुसीं जे जपोगे। आओ आपां मन्नीए गल,

हमरे दुष्ट सबे तुम घावो आपा दह मोहे बचावो। सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा। मोर छान कर दे करिए सबन को आसंगरिए। पूर्ण होए हमारी आसा तोर पिन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो भर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आबाद दे मुझे अबरिय मन काल का त्रास नवरिय। हूँ जो सदा हमारे पच्चा श्रीय तुझो करो रचा। राख लियो मोए रखन हारे साहेब संत साहे प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुमो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन पुजायो। आदि अंत कै अवतारा सोए गुरु समझो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी सगल प्रजा जने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पल मोवद कियो। कर कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चिट्टी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृश कर पूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने। जब

ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेद न पावत वेदा ताको कृपान अनुमानत महा मूढ़ कछ भेद न जानत।

जावै बैठा कौन सिंह प्यो शंकर कैठा सिगरी सिष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वंभव आप रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट ते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख वह मरे

रक्षावेताय सब काला दुष्ट रिष्टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय नार्यो ताके ताप तनक मोहर्यो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास वै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताय उबारा

सर्व धर्मो सहाय दुष्ट दोख ते लो बचाए कृपा करे अंबर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता किलमिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को जय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़ल सुने गुंग जो जाए सुरस ना पावे सुने मूड़ चित लाए चतरता आवे

चौपे मैं नग्ने स प्रथम मनाओ किशन बिशन कबू न त्यो कान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पगिन सो

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सतर हमारे मरिय देख देख जग में दो चले राख्या मोय ओ न दलम।

जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहूं जग माहे, जो ते प्रभु को त्याए हैं अंत स्वर्ग को जा है दोहरा। हर हर जन दुई एक है विव विचार कृष्ण कछ न्याय ना है। जलते उपजते रंग ज्यों जले बिखे समाहे दोहरा। जब इस प्रभु को प्यो जन्म तरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सबहू कह सुनाए। काव्य बाच दोहरा

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना
1: अंगीकार हु करे तेरा कार्ज सब सुवारना सब नाम गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करदा तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वस्यावा जे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा उधार हो साज नाम उधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया है वड्याइया कहे नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तिद घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तो जिन काओ से नाम हर के लागे कहे नानक तैं सुख हो तिद कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे बिरवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वाहत तरी नह जाई नित नित राखे व्रतारो

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पात साहिं दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहै। हरि अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ दयावे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता। तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिरवाए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सदके सां सुआसां संग निभाया। जिन्ना समूह शहीदां दी कमाई दा

इन शब्द सुरत की निवरखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है। एक जीह कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सगल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की

हंसी हो सृजनहारो, तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहेला, हवारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पाहो तेल, देहो सज्जन असिसड़िया, जो हो वै साहिब स्यो मेल। कर कर हे पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छह कर छह गुर छह उपदेश, गुर गुरे को वे सनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख उड़ाई तोए रहाओ। विश्वे चसियां कड़ियां पैरा, थिती वारी माहो होवा, सूरज को रुतनेक, नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला, गगन मैं थाल रव चंदीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलियान लोपन चवरो करे, सगल बंदराय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पौ खन्ना, तेरी आरती अनता सब द्वाजंत फेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नना एक तोही, सहस पद विमलन एक पद गंध बिन, सहस तव गंधे चलत मोही।

दृष्टता दृष्ट पैता पितरियायो मेरा मन तन अन दिन सीत लाग्यो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारग महला पांजवा माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरे कहो मैं चीक कांठड़ी बाधा रहाओ निसबासर नखेत्र बिनासी रब से सिर बिनादा गुर बसदा गिर बसदा जल पवन जाए गो एक साध बचन अटलादा अंड बिनासी जेर बिनासी अतप सेत बिनादा चार बनासी खटे बनासी एक साध बचन निचलादा राज बनासी ता बनासी साकत भी बिनादा दृष्ट मान है सकल बिनासी एक साध बचन आगादा आपे आप ही आपे सवे आपन खेल दिखादा पायो ना जाही कही भां तरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सारग महला पांजवा मेरे मन बास बो गुर गोबिंद जहां सिमन प्यो है ठाकर तहां नगर सुख आनंद रहाओ जहां बीसरे ठाकर प्यारो तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां सर्वन हर कथा ना सुनिए तै महाप्यान उदयानंद जहां कीर्तन साध संगत रस तै सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औध बिरथ

पायो लाल अमोल नाम हर छोड़ न कत हो जाय कौन उपमा कौन बढ़ाई कै गुण कहो रजाए कौन उपमा कौन बढ़ाई क्या गुण कहो रजाए होत कृपाल दीन दया प्रभ जन नानक दास दसाए सारग मोहल्ला पांजवा ओए सुख का स्यो वर्ण सुनावत आनंद विनोद पे।

जो चाक गुंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राख्यो बूझ न आवत जावत जाको हृदय प्रगास पयो हार उआ की कही न जाए कहावत आन उपाव जेते केश कहिए ते ते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अब नासे अतुल तुल्यो न जावत कोह नानक अजर जिन जरिया।

अहमद माता जन्म जुए ज्यों हारे रहाओ नाम अमोला प्रीत न तस स्यो पर निंदा हितकार छापर बांध सवारे त्रिण को द्वारे पावक जार कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डार उडे बस्तर कारज मैं भरिया उडे बस्तर काजर मैं भरिया बोहर बोहर फिर चार काटे पेड़ डाल पर ठाडो खाए खाए मुस्कार गिरियो जाए रसातल परियो छिटी छिटी सिर पहार निर्वैरे संग वैर रचाए पोच न सके गवार कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार सारग महला पांजवा अवर सब भूले परमत न जानिया एक सदाखर जा कहर दे वसिया तिन बेदे तत पछानिया रहाओ पर व्यर्थ मार्ग जेता किच होइए ते ता लोग पचारा जौलो हृदय नहीं परगासा तौलो अंध अंधारा जैसे धरती साधे बोबिद बिन बीजे नहीं जाम राम ना बिन मुक्त ना होई है टूटे नाही अभिमान नीर बलोवै अत शर्म पावै नैनू कैसे रिस बिन गुर भेटे मुक्त न काहू मिलत नहीं जगदीस खोजत खोजत एह बिचार्यो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तस भयो परापत जाकै लेख मथामा सारग महला पांजवा अन दिन राम के गुण कहिए सगल पदार्थ सर्व सुख सैद मन बाँध फल लहिए रहाओ आवो संत प्राण सुख दाते सिमरे प्रभ अबनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहे घट वासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पीवड भागे कल कलेस मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंदन

जन तेरा पूर रहो सर्ब मैं ठाकर नानक सो प्रभ नेरा। सारग मुहला पांजवा बलहारी गुरदेव चरना जाकै संग पार ब्रह्म त्याई है उपदेश हमारी गत कर न रहाओ। दुख रोग पै सकल बिनासे जो आवे हर संत सरन आप जपै अवरै नाम जपावै वड समरथ तारन तारण। जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे को सुबर भरना हर दासन की आग्या मानत ते नाही पुन गर्भ भरन। भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरना जाको पयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरना। हर रसे अगाने सहज समाने मुक्ते नाही जात वरन गुरप्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन। सारग मुहला पांजवा गायो री मैं गुण निध मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो रहाओ। संते चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साध मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया। भगते दर्श देख नैन रंगा मोह लोभ मोह टूटे परम पंगा कहो नानक सुख सहज आनंदा खोल पीत मिले परम आनंदा। सारग मुहला पांजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कैसे कहो मोहे जी बेदनाय दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर मन न रहे बो बिद उमकाई रहाओ। चेतवन चेतो प्रे प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो हे मन नहीं धीरै कु है रे संत मिलाय। जप तव संजम पुन सब होमो तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमख प्रिय दर्श दिखावै तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई मान अभिमान हो सकल त्यागो जो प्रे बात सुनाई। देख चरित पई हो बिस्मना गुर सत गुर पुरख मिलाई प्रभ रंग दयाल मोहे हर ग्रह मैं पाया जन नानक तब तब जाई। सारग मुहला पांजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक घोर मैं उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ। अनक जन्म भरम तो ही आयो मानस जन्म दुल पहाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अन ठाही। करे बुराई ठगाई दिन रहना नेफल कर्म कमाही कण नहीं तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही। मिथ्या संग कूड़ लपटायो और ज पर्यो कुस माही धर्म राय ज पकड़ सबरे तो काल मुखाय उठ जाही। सो मिलिया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलहारी जो अलप रहे मन माही। सारग मुहला पांजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिचरत होत मृत का ग्रह में रह न पाई रहाओ। जी ही प्राण को दाता जाके संग सहाई करो कृपा संतो मुहे अपने प्रभ मंगल गुण गाय। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो धूर बंछाई जय प्रसाद मिलिए प्रभ नानक बल बल ताके हो जाई। सारग मुहला पांजवा वह अवसर कह हो बल जाई आठ पैर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाओ। भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम दियो समदर्शी ऊच ते ऊच नाम दियो समदर्शी रविदास ठाकर बाणे आई। जियो पिंड तन धन साधन का ए मन संत तेरे नाई संत प्रताप भरम सब नासे नानक मिले गोसाई। सारग मुहला पांजवा मनोरथ पूरे सतगुर आप सगल पदार्थ सिमरन जाकै आठ पैर मेरे मन जाप रहाओ। अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवे तैसी त्रिपतास जन्म जन्म के किल बिखनासे अगे दर गए होए खलास। सरन तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश कर कृपा तेरे चरण ते आवो
ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਦਰ ਸਪਿਆਸ ਸਾਰਗ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਕਹਾ ਲਭਾਈਏ ਆਨ ਕਹੋ ਈ ਤਿਉਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ਰਹਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨੋਹਰ ਇਹ ਅਗਾਵਨ ਪਾਨ ਕਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕਉ ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨੇ ਅਤਾਰਨ ਮਾਨ ਕਉ ਖੋਜ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਥਾਨਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਬਿਸਰਾਮ ਕਉ ਸਾਰਗ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਨ ਸਦਾ ਮੰਗਲ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇਰੇ ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਅਗ ਨਿਮਖੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਹਾਉ ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤਰਾਈ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਜਾਏ ਪਾਏ ਜੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ ਜਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਏਕਸ ਬਹਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਆਨਣਾ ਬੀ ਉਹ ਲਵੇ ਲਾਏ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਨ ਸਾਏ ਸਾਰਗ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰ ਜਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸੰਗ ਕੇ ਪਹਿ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹਰੇ ਰਹਾਓ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਤਿਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਸਿਉ ਗੋਸ਼ਟ ਸੇ ਤਰੇ ਬੂਢਦ ਘੋਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤਿਨ

राम राम त्याए एक पलक सुख साध समागम कोट बिकुंठे पाए रहाओ दुलाब दे जप होत पुनीता जम की त्रास निवार महापत ते पात के उतर हर नामा और तहार जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन मरण दुख नासा कहो नानक पाए वडभागी मन तन होए बेगासा सारग महला पांजवा दोप दे घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन घर आओ करो जो दरिया मान करो अभिमाने बोलो भूल चूक तेरी प्रिय चिरिया रहाओ निकट सुनु हर पेखो नाही भरम भरम दुख भरिया होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरै स्वामी जानो कोट दिन सलख बरिया साध संगत की पीए जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारंग मोहल्ला पांजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहया देह नाहो बलहारी रहाओ चौदस फूल रही बिख्या बैख गुर मंत्र मुख गुर डारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किश मैं क्या होसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछ राग संत सदकारी सारग महला पांजवा अब मोय सर्ब अपाव बिरकाते करण कान समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बौ रंगा अन नाही तुम भांते देह आधार सर्ब को ठाकर जी प्राण सुख दाते भरम तो हार जो परयो तो गुरमिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्ब सुख पाया ए सुख बिहानी राते सारग महला पांजवा अब मोहे लब दो है हर टेका गुर दयाल पै सुख दाई अंधले मानक देखा रहाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विगास विवेका जो जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकर पै एका जय ते उठ्यो तै ही आयो सब ही एक एका नान

तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोगर ज्ञान ध्यान एक निमख न कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें छत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक साध कुरबाना सारग मोहला पांजवा मेरे मन चीत आए प्रिय रंगा बिसरियो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेव हर हृदय बसावो हर पाया सत संगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग नसंगा निरपो पह नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारग महला पांजवा हर जियो के दर्शन को कुरबानी बचन नाद मेरे सर्व नू पूरे देहा प्रिय अंक समानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगड़ सुजानी जय कर में बैसन नहीं पावत सोथान मिलो बसानी उनके बस आयो भगत बचल जिन राखी आन स

मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ बिखम थान बहुत बहुत धरिया अनकराख सरूटा बिखम गार कर पहुँचे नाहीं संत सानथ पै लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया रा अनक राग सरूटा बिखम गार गुर पहुँचे नाही संत संत पै लूटा बहुत खजाने मेले मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तो मन में हर रस कूटा सारग मोहल्ला पांजवा अब मेरो ठाकर स्यो मद मन लीना अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया और जायो जो जल मीना रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर ए अर्प सगल दान कीना मंत्र दड़ाए हर औखद गुर दियो त्यो मिलियो सगल पर बिना ग्रह तेरा तू ठाकर मेरा गुर हो कोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज कर पाया हर भगत भंडार खजीना सारग मोहल्ला पांजवा मोहना सब जी तेरे तू तारै छूटे संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उधारे रहाओ करे अरदास बहुत बेनंती निमख निमख संभारे हो कृपाल दीन दुख भंजना हाथ दे निस्तारै क्या ए भूपत बपरे कही है कैसनो क्या कहो कैसनो मारै क्या ए भूपत बपरे कही है कहो किसनों मारै राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारग मोहल्ला पांजवा आप मोए धन पायो हर नामा पै अचिंत त्रिसन सब बुझी है ए लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत भयो बैरागी फिर आयो दे गिरामा गुर कृपाल सौदा एहो जोरियो हथ चरियो लाल अगामा आन बपार भंज जो करिए तेते दुख सहामा

तेरा अगम अगम घटवा सरहाओ अभूल न भूल लिखियो ना चलावे मता न करे पचासा खिन में साज सवार बिनाहे भगत वचल गुण तासा अंधकू मैं दीपक बलियो गुर दे कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूर्ण होई आसा। सारग महला पांजवा चरने गोबिंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता किछ ताहिए ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पै दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा रिदा पनीत रिदे हर बसे हो मस्त पनीत संत तुरावा।

देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे। कहो नानक मैं तुल सुख पाया जन मरण पहला ते। सारग महला पांजवा रे मूड़े आन काहे कत जाई संघ मनोहर अमृत है रे भूल भूल बिख खाई रहाओ। प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते तिस सुरुच नहीं राई मोहन स्यो बावर मन मोहयो झूठ डगौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यो बन आई सगल निदान करे मह पाए को नानक जोत समाई। सारग मुहला पांजवा ओ अंग प्रीत चीत पहलरिया जो तो बजन दियो मेरे सतगुर तो मैं साज सिंगरिया रहाओ। हम भूल तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उदरिया हम नीच बिरख तुम मैं लागर लाज संग संग बसरिया। तुम गंभीर धीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया गुर कृपा नानक हर मेले ओ तो मेरी सूख सजरिया। सारग मुहला पांजवा माना ओए दिन सतन परवाना सफल ते करी संजोग सहावे सतगुर संग ज्ञान ना रहाओ। धन सुभाग धन सुहागा धन देत जिन माना ए तन तुमरा सब ग्रह धन तुमरा हियों कियो कुरबाना। कोट लाख राज सुख पाए एक निमख पेख दृष्टाना जो कहो मुखो सेव के बैसी है सुख नानक अंत न जाना। सारग मुहला पांजवा अब मोरो सहसा दुख गया और अपाव सगल त्याग छोड़े सतगुर शरण पिया रहाओ। सर्ब सिद्ध कार्ज सब सवरे अहंग रोग सगल ही खिया कूट अपराध खिन में खो पई है गुर मिल हर हर कहया। पंच दास गुर वस गत कीने मन निश्चल निरपया आए न जावे न कत ही डोलै थिर नानक राजया। सारग मुहला पांजवा प्रभ मेरो एत्युत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कहवा कवन कहाँ गुण गाय। प्रभ मेरो एत्युत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कवन कहाँ गुण गाई रहाओ। खेल खिलाए लाड लडावै सदा सदा अन्नदाई प्रतपाले बारक की न्याई जैसे मात पिताई। तिस बिन नमक नहीं रह सकिए बिसरना कब हो जाई कहो नानक मिल संत संगते मगन पै लिवलाई। सारग मुहला पांजवा अपना मीत स्वामी गाइय आसना अवर काहू की कीजै सुखदाता प्रभ त्याई रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे घर सुख मंगल कल्याण जिसे घर तैसी सरणी पाइए तिसे त्याग मानक जे सेवो तो लाज लोन हो जाइए। एक ओट पकरी ठाकर की गुर मिल मत बुद्ध पाइए गुण निदान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताइए। सारग मुहला पांजवा ओट सताणी प्रभ जियो मेरा दृष्ट न लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ तेरा रहाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने काढ़ लिया बिख केरा अमृत नाम औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैर। कवनी उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दा तेरा काट सिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेरा। सारग मुहला पांजवा प्रभ सिमरत दुख बिनासी पयो कृपाल जी सुखदाता होई सगल खलासी रहाओ। अवर न को सूजे प्रभ बिना कोह को किस पै जासी जो जानो त्यो राखो ठाकर सब के तुम ही पासी। हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अबनासी कोह नानक मन नंद पिया है काटी जम की फासी। सारग मुहला पांजवा मेरो माना जात का तुझे सुम्हारे हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे जो जाने त्यो पार रहाओ। जब भूखो तब भोजन मांगे अगाहे सुख सघारे

तब जीवन पाइए बेनती नानक हे सारै। सारग महला पांजवा। मन ते भय पो दूर परायो, लाल दयाल गुलाल लाडले, सहज सहज गुण गायो रहाओ। गुर बचनात कुमात कृपा ते, बोर न कतहु तायो, रहत उपाद समाद सुख आसना, भगत वछल ग्रह पायो। नाद बिनोद कोड आनंदा, सहजे सहज समायो, करना आप करावन आपे, ओ नानक आप अपायो। सारग महला पांजवा। अमृत नाम मने आधारो, जिन दिया तस कै कुरबान, गुर पूरे नाम सकारो रहाओ। बुझी तृष्णा सहज सहेला, काम क्रोध

जन पदार्थ पयो पनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करो प्रभु मेरे सो हर का जस गावै आठ पैर गोबिंद गुण गावै जन नानक साध बल जावै सारग महला पांजवा जीवन तो गनिए हर पेखा करो कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा रहाओ कहत सुनत कछ शांत न उपजित बिन विसास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ताके मुख लागे काले खां जाके रास सर्ब सुख स्वामी आन न मानत भेखा नानक दर्श मगन मन मोहयो पूर्ण अर्थ बसेखा सारग महला पांजवा सिमरन राम को एक नाम कलमल दगल होए कलमल दगद होए खिन अंतर कोट दान स्नान रहाओ आन जंजार बिरथा शर्म कालत पूर्ण बिन हर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूट जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभिमान सारग महला पांजवा धूरत सोई जे धुर को लागै सोई धुरंधर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागै रहाओ बलबंच करै न जानै लाभै सो धूरत न मूड़ा स्वार्थ त्यागत असार्थ रच्यो नै सिमरे प्रभ रूड़ा सोई चतर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारग महला पांजवा हर हर संत जिना की जीवन विखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ सांचन नाम राम नाम तन रतना सांचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीवन हर रंग रंग पै मन लाला राम नाम रस कीवन जो मीना जल सिव उर जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातर की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन सारग महला पांजवा हर के नाम हीन बेताल जीता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ बिन प्रभ सेव करत अन सेवा बिरथा काट काल जब जम आए सिंगारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख लिहो दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निधान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारग महला पांजवा मन तन राम को ब्योहार प्रेम भगत गुण गावत गीदे पोहत ने संसार हाओ सर्वणि कीर्तन सिमरन स्वामी ए साध को अचार चरण कमल अस्थित रिद अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपने तार नाम निदान उचरो नित रसना नानक साध बलहार सारग महला पांजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री धर ठाकर मिलते अंध दुख घोरी रहाओ हर के नाम सो प्रीत ना लागे अनक भेख बहुत जोरी टूट दबार न लागे ताको जो गागर जल फोरी कर कृपा भगत रस दीजे मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दा तेरी सरनाई प्रभ बिन आन न होरी सारग महला पांजवा चितवो वाह अवसर मन माहे हुए कतर मिलो संत साजना गुण गोबिंद नित गाहि रहाओ बिन हर भजन जेते काम करिय तेते बिरथे जाहि पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहि जब तब संयम कर्म सुख साधन तुलना कछ वै लाहे चरण कमल ठाक

डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हाथ मेरे हीरे रतन नाम हर वसिया गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा वाहेगुरु साहिब जियो दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होवे प्रभ मेरा एह बेनंती

बंधन तोर शोर बिखिया ते गुर को शब्द मेरे हियरे दीना रूप अन रूप मोरो कश नाम विचारे हो प्रेम गे हो मोहे हर रंग पीना पेख्यो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता

नंद मुकावता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा ब्याय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन मृते सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ धाम धन धन ते जन जे घट बस्यो अर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ।

जिसके अंतर से नंकार जिसकी सीख तेरे संसार जो तुम पाने तिन पर जाता नान गुण जन चन प्राता करो बेनती पार बन सब जाने अपना किया आपे माने आप है आप करतन मेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा भाव से आण सगल दे रहत सब कि जाने आत्म की रहत जिस भावे तिसले लड़ लाए तान तनंतर समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अलो मोह विनिश्चय अमेव नानक प्रश्न अगति कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदी जे प्रसाद शक्ति अमृत गाए तिस ठाकर को रख मन माए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमृत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याई त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कत अवर लवावे जय प्रसाद सुसे जी जय मने आड़ पैर तागा जस गा विजय जय प्रसाद तू सबको मान मुख ताको जस रसन मखान जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्राप जी जगत दरगे मान पावे नानक पद से ती कर जावे जय प्रसाद रो कंचन दे ही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जिस कहत जय प्रसाद तेरे सगल सिर ठाके मन सरणी पर ठाकर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको नाम पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भक्त करे जय प्रसाद भूखन पहरी जय मंत सिमरत क्यों आलस की जय प्रसाद असो हस्त सवारी मंत प्रभु को कबू नाम सारी जय प्रसाद भाग मिलक धना राग प्रोहे प्रवे अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक लखे इया नानक तेरी रखे जय प्रसाद करे पुन बो दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू चार व्यवहारी तिस पर को सास साज तारी जय प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नूप जय प्रसाद तेरी निक्की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नान जस कहे जय प्रसाद सुने करण नाद जय प्रसाद पेखे बिस्मान जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुसै जय बसना जय प्रसाद हस कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुसै समावे ऐसा प्रभ त्याग गर्व कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो सार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ता को जाव जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू दास सिमरा जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गाव आए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल निवास प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्वनिधान प्रभ तेरी मैया।

जो कहेश मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साजना की आचर्य कथाष्पदी। साध के संग मुख उजलोत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होतन मेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी, साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बहन, साध के संग न कतू तावे, साध संग अस्तित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापनीत, साध संग कस्यो नहीं बैर, साध के संग न बिगा पैर, साध के संग

नीच का साजा कहूं अब कीर्त में आवे कहूं भला भला कहावे जो प्रभु राखे तीर गुर प्रसाद नान सच कहे कहूं हुए पंडित करे विख्यान कहूं मोहन धारी लावे ध्यान कहूं तर तीर्थ स्नान कहूं से साधक मुख ज्ञान कहूं कीट हस्त पतंग जियो अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभ भावे तिवे नचावे जो तुज भावे सोई होए नान दूजा न कोय कबू साध संग दे पावे उस स्थान ते बो नावे अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते करंग सदा से पारों के संग जो जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो सुमन्ना

गर्भगले आशपति जिसके अंतर राज मान सो नर्क पाती होवत सुहान जो जाने मैं जोवन बंद सोवत विष्टा का जनते आपस को कर्मंत कहावे जन्म मरे वो जोन परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानक इयां मुक्ता के सुख भावे तनवंता होए कर कृपा वे तृण समान के संग न जावे बहु लश्कर मानु कोपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सावते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे मान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करे अवतारे शर्म पाए सगले बिरतारे आनक तपस्या करे अहंकार नक सुर फिर मेरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं दरवे हर दरगह को कैसे गवे आप उसको जो भला कहावे तिसे भलाई निकना आवे सर्व की रेन जाका मनो ए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लज्जा ने मुझते कछ होए तब इसको सुकुनाई कोए जब वे जाने मैं किस करता तब तबला गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मी तबला ने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तबला धर्म राय देश जाए।

बिना संतोख नहीं को राजे सोवन मनोरथ बिरते सब काजे नाम रंग सब सुखोए मटभागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावने आपे आप सदा नान कर जाप कर्ण करावन करने हार इसके आद का विचार जैसी दिश करे तैसा होए आपे आवा प्रभ सोए जो किसकीनो सो अपने रंग सब दे दूर सबू के संग मुझे देखे करे मेघ आपे कापे अनेक मरे नाम से आवे ना जाए नान सदी रह समाए आप उपदेश समझे आप आपे अच्छा सबके साथ

ज्यो मंदिर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पा खान नाव चढ़ते रहे प्राणी गुर चरण लगत निस्तर रहे ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मनोय विकास ज्यो महा ध्यान में मार्ग पावे तिन साधु संग मिल ज्योत प्रटावे तिन संतन की बादशो धूर नानक की हर लुचा भूर मन मूर काय मिल लाइया पुरब लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार त्याग तुंत सजदार जो किस करे सोई सुखमान भूला काय फिरे जान कौन बस दाई तेरे संग लब डो रस लो भी पतंग राम नाम जबिर दे माए नानक पद सिद्धि कर जाए जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज मान लियो मन मोल राम नाम हृदय में तो लाद के संतन संजाल अवरत्याग बिख्या जंजाल धन धन के सब गोए मुख उजल अर्दर के सोए एव पार बिरला पारे नानक तांके सतबलियारे चन साध के धुत पियो अर्प साध को अपना जियो साध के धूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुरबान साध सेवा उड़भागी पाई है साध संघर की तिन गाये अनक बेगनते साधु राखे हर गुण गाये अमृत रचा के जो ओट गये संतेंद्र आया सर्व सुख नानक ते पाया मृत को जीवालन हार भूखे को देव दे आधार सर्व निधान जा की दृष्टि माए पुरब लिखे का लहना पाए सब के तिसका ओ करने जो तिसमें दूसर हो न हो जब जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उस निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल दिया जाके मन गुरु की प्रतीत ते जन आवे हर पव चीत भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय को होए सच करनी सबता की रह सच हृदय सतमुख कहत साची दे सचा आकार सच वरते साचा पसार पाप ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सत समाता श्लोक रूप ना रेख ना रंग के त्रै गुण ते प्रपिन्न

प्रकाशे नान भरम मोदे नासे तात माए ठान बरताई अंध प्या दुख नाठे पाए जन्म मन के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निर्भोय वसे सल ब्याज मते गए नसे जिसका साधन कृपा तारी सा संग जप नाम मुरारी तित बाजू के परम गमन सुन नानक हर हर जस सरगुण निर्गुण आप सरगुण भी हो ही कला तार जिन सकली मोही।

मिर्जंदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सास सास प्रभु तुम्हें त्याव चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो। प्रभु की नंदनी दे को टेको आधार, नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दिशमान सुखोए, अरस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख ने डोला ने सुब्र परे प्रेम रस रंग उपजे साओ साध कै संग परे सन्नान सब त्याग अंतर प्रकाश अंधन लिवलाग बटपा की जपया प्रसोए नानक नाम रते सुखोए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मतलही जन को प्रभ होयो दे आल। सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुख जन पया जन्म मरण दुख परम गया। इशपुनी सदा सब पूरी राव रया संसंग हजूरी जिसका साधन लिया मिलाए। नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों मिसरे जे काल न पाने सो क्यों मिसरे जे किया जाने सो क्यों मिसरे जिन सब कुछ दिया सो क्यों मिसरे जे जीवन जिया सो क्यों मिसरे जे अखन में राखे गुरप्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों मिसरे जे बिकते कांडे जन्म जन्म का टूटा कांडे गुरपूरे तथे बजाया प्रभ अपना नान जन त्याया। साजन संत

जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लाभ मनीत हाम निर्गुण यार नीचे जान नान तुम्हें शरण पुरख भगवान सर्व कुंड मुक्त मोख पाए एक निम करके गुंगाए अनकराज भोग वड्याई हर के नाम की कथा मन भाई बो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हरा नीत भली सुकानी शोभा तनवंत हृदय वसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रदेव निवास सर्व सुख नाम प्रकाश

जब अकारे कृष्णा दृष्टे तब आपन तब कहते हो जब धारी आपन सुन समात वैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चेन न जब तब हर शोको से व्याप्त जब अपने आप आप पार ब्रह्म तमो कहा किसोत भरम आपन खेल आतीजा नानक करने हारन दूजा जब होवत पर केवल धनी तब को किसको गनी जब एक रगम।

महाराज अपनी शोभा अपन संग मनाई। ताब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे प्रवीण। तब तै भेद देव का को चीन जब अपन आप आप उधार है तब सगन अब सगन का विचारे। जय अपन ऊंचा अपने अपने तय कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। विस्मन विस्मरे विस्मात नानक अपनी का जानो आप। जय छल छेद भेद समाया हुआ किसे व्याप्त माया।

जिस प्रसाद सजग तराया जन अवन गाये स्वाव जन के संग जदावे नाओ आ मुक्त मुक्त करे संसार नानक।

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूरमो पाख सार असंग मोले लाए तार

अमल गुण अमर व्यापार अमर व्यापारी अमर भंडार अमल आवे अमल्ला जाहे अमल पाए अमल्ला समाहे अमल तरम अमल दीवान अमल तल अमल परवान अमल बख्शीस अमल निशान अमल करम अमर फुरमान अमल अमल आख्या न जाए आख आख रहे लिव लाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़ करे वख्याण

सद सुमादे अंदर गावन साध विचारे गावन जते सते संतोखी गावा वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखे सुर जुग जुग वेदा नाले गावा मोनिया मन मोहन सुरगा मच पाया ले गावन रत्नो पाए तेरे अड़सर तीर्थ नाले गावा जोत महावर सूरा गावा खानी चारे गावा खांड मंडल वर पंडा का

सोई सोई सदा सच साहेब सचा सची नाई है पी होसे दैन दसी रचना जन रचाई रंगे रंगे पाते कर कर जिन से माया जिन उपाई कर कर वेख्या किता अपना जत दी वड्याई ज्योत पावे सोई कर से हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहब साहेब नानक रहन रजाई।

नमो सर्वमान्य समस्त निदाने नमो देव देवे भिखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे अनंगे नाते संगे प्रमाते नमो पान भाने नमो मान माने नमो चंचंद्रे नमो पान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे रंगी नामे समस्ति स्वरूपे प्रवंगी प्रमाते समस्ति विभूते कलंकम नाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रेश्रम परम रूपे नमो जोग रेश्रम परम सद्धे नमो राज रेश्रम परम विरदे नमो शर्तर पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी परमे भोगी भुगते नमो जोग रेश्रम परम युक्ते नमो राज रेश्रम परम विद्ये अपेक्ष अपरमी भोगी भुगते नमो जोग रेश्रम परम युक्ते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अपरे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शासन नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्ते शनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सज्जानंद सर्व प्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा में सिद्धा बुद्धा मृद करता दूध हरदंग आगम हरता परम परम परमेश्वरं पुष्पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं शेदी भेदी नाम कम समस्तो पराजी समस्त सद्धाम ते राजोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीते हैं पै हैं प्रभु है जू है देश है भेस है भजंग प्रजा छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ते निधाने नमस्तम नराते नमस्तम परमाते नमस्तम गंजे नमस्तम अपंजे नमस्तम काले नमस्तम पाले नमो सर देशे नमो सर भेसे नमो राज राजे नमो साजे नमो शाह शाहे नमो मा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर जीत नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञान नमो परमतान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र नमो सर्व दर्शन नमो सर्व कीर्तन नमो सर्व रंगे त्रिभंगी रंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखी जय पीजे समस्त प्रसिजे कृपाल स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वधारित सदम निवासी चरवर शन त्वे प्रसाद अमृत कर्मे मृत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खाल धर्म लख कर्म

प्रचंड मितगत खंड लिशा कर्म दिशा धर्म सर्व प्रणांड्या दंड बाड़िय चाचरी संद्वाय प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियन नामे अकामे भुजंग भुजा छंद

अजय है अजय है भक्ति छंद प्रसाद के जहर जहूर है के हाजिर हजूर है मे सुर सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है सुल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है।

मन मत प्रकाश गुणगण प्रणाम जल थल मदाम अंश अंग आसन भंग उपमा पार गतमितधार जल थल मंड दिस भंड जल थल मंत जल थल महंत दिस विच बेअंत अनपौ नास तिरता तुरास जान बाहो एक कैसा ओंकार आद कथनी अनाद खाल खंड ख्याल गुरवर काल

तीर्थ के धरण है, जग के कर्ण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्व पर है, सर्व कर है, सर्ववासी है, सर्वनाशी है।

दुकालं बना सीधे आलं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वयंभव स्वं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तुए प्रसाद सोई है श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सदाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के

तोरा रीन मरोर बुमासन माते दंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरयार विचारे सार के तार पशैया।

सिमरत शास्त्र भेद सब वो भेद गए हम एक न जाने हो श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना क्यों सब तोय बखान्यो दोहरा सगल द्वार।

Acharya. आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टा दिनका सब सच्चे सवारा कहे नानके आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू

अकथ की करा कहानी करा कहानी कथ केरी के द्वारे पाइये तन मन धन सब सोम गुरु को हुकम मनिये पाइये हुकम मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नान सुनो संतो कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने ना पाया चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोनी जिने भरम भुलाया माया माया ता मोनी तने कीती जिंट गोली पाईया कुर्बान कीता तिसे विटो जन्मो मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सत समाले कुटम तू जे दे दा चले ना ही तेरे नाले सा तेरे चले ना ही तिस नाल क्यों चितलाई ऐसा कम मूले ना कीचे जित

मन प्यारे तू सदा सत्समाले अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया अंत न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या को आप खाने आखे तो वेखे सब तू है जिन जग तो पाया कहे नान तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तद पा के वेख परसन आया लाभ लोभ अंकार चुका सतगुरु भला पाया कहे नान जिसनु आप तुठा तेने अमृत गुरते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिकम मार चलना

तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए और किते चरा रस पले ना पाए। हर रस पाए पले पिए हर रस भौण तृष्णा लागे आए और रस करमी पाई है सतगुर मिले जिस आए। कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसे मन आए शरीरा मेरिया। हर तुमे जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुदे ता तू जग में आया। रापे माता आपे पिता जन जीव पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया त चल तो अचल नदरी आया। कहे नान सिष्का मूल रचया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ पिया राव आगम सुनिया हर मंगल गाओ सकी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे। अनंत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हरस भोगो। कहे नानक प्रयाप मिलिया करण कारण जोगो।

जिस बख्शे सो जन पावे, कहे नानक सच सोला सच्चे कर गावे। आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया। उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप, उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बेनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया

0: पूजा पड़ंग ते पा संयम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम न जाए तरंदा मोहला पहला
1: मानस खाने करे निवाच।

संग अष्ट सोतम उठ तान कलो लगायन तार मिलावही। तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई। सरस अहिरी लै पार जा संग लाई पंचो आर जा। सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिमंगलन सोहाय। सरस वाहे बिनोदा गावह सरस बसंत कमोदा।

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विच

गावह चित गुप्त लिख जाना है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावह इंद इदासन बैठे देवतियां दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी।

प्रचंड तिथे नाद बिनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया वधाइया रागर तन परिवार परियां।

अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जन सब तो दियो पाए, एक वेख पर सुन आया, लाभ लोभ अहंकार चूका

सदा कुर्बानी बोलना जी वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय।

फिरे अंगद गुर ते अमरदास राम दासे होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाव सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जे रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जियो सब थाई होए सहाय।

दूसरा अखंड पाठ माता सुरिंदर कौर जी, तीसरा भाई गुरपाल सिंह जी, सारे परिवार के चरण बीती है, जल्दी जल्दी आके अपना सिर पोलो। भाई गुरसेव सिंह जी भुल्लर, बोले सोनिया, भाई गुरदेव सिंह जी ढिलों ढिलों परिवार, बोले सोनिया, बोले सोनिया।

जिस बल पावे सोई दुगुण से व्याप्त कोई अड़िल सुने गुंग जो जासर सुना पावे सुने मूर्छित लाए चतरता वे दुख दर्द पाओ निकटना तिन नर के रहे हो जाकी एक बार चौपी को के चौपी सम सत्रह सहज प्रणी जय हर सहज पंथी की जय पादरो सुधी अष्टमी रविवार तीस तद्रा गण सुधारा सुय पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तिरे निया न्यूम राम रहीम पुराण करान अनेक मत एक न मान्यो सिमर शास्त्र वे सुबह वो भेद कह एक न जान्यो